असे मेरा गमना को खानी वो मासे था मना को करू रिका से मेरा गमना को कामी हो रिके मरे मानु की सुन ले मेवा ब्रह्मा वाई या का गोली मले लावले ब्रह्मा वाई या का गोली मले लामीबा अम्मु इता मल्याकु कई दान रचनाय कई दे गुलुआय कई तुम्हाई हो बजाय कई रोवा में कुआंसाय कई हले नरवानुं कई हले नरवामाय किरुए सिमा कवा अचाका किवरिया नगी वेट यो मामनो वेला का किवरिया नगी वेट.

अरे वाह, किन रूपा रटा ओरा वा मिस्तामा किन रूपाई मुश्तुलुमा रद मुसंबिकी वा मपुला निन रोपा हरिया कानी मसिपा हुया नुक मेरिया हनाला मुनीवा ने वेर लका ने वो वेर नवे उवेरने लेके सापतो अन्येला आयो वो इकला एपिसोड कनले ओ वो शंकी हनी आई.